आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका

अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई

0: भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवा सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त?
2: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आप

0: को स्वस्थ, तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानते हो लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं, तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदलें। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहाँ रहते थे उनका एक्सेस वहाँ खत्म हो जाता है और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो या फिर उसकी एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है, तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है। इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती हैं, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है और एक स्पेयर की जो

0: रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपकी लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें। और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें, ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों

0: साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ और जायद दोनों मौसमों में तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो कि कम लागत, कम पानी और अच्छे मुनाफे के लिए जानी जाती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है जो देखते देखते पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में फाइलोडी या फिर ग्रामीण भाषा में कहें तो गुम्मा रोग, मुर्शिया या माता रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए और कैसे इस बीमारी से तिल की फसलों को बचाया जा सकता है, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर

0: देखते हैं कि हवा में नमी भी कम है, तो क्या ये मौसम बीमारियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो जाती है?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे जिस बीमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम गुम्मा बीमारी, मूर्छया, माता रोग या फाइलोडी कहते हैं, तो अभी अगर हम देखा जाए तो हम तिल जो है वो दोनों, आप गर्मा तिल कह लो या खरीफ में, दोनों में हम तिल को लगाते हैं, और ये बीमारी गर्मा में भी आती है और खरीफ में भी आती है। लेकिन जब हम इसका जिस तरीके से अभी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, हवा पछवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गर्मा तिल में इस रोग का जो आप अटैक कह लो वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ये जो है ये एक तरह का बीमारी को कह रहे हो आप, एक तरह से हवा दे रहा है कि
0: न्योता
1: हाँ
0: देता है।
1: बढ़ना ही बढ़ना है ये।
0: हाँ तो मैम, ऐसे में किसान भाई बहन कैसे पहचाने कि उनके उनकी फसल में बीमारी लग गई है और गुम्मा बीमारी लग गई है?
1: बिल्कुल, जैसे कभी कभी आप देखोगे एक ही तरह की बीमारी के लक्षण अगर आप सामने से पौधे में देखोगे तो बिल्कुल एक समान लगता है, लेकिन इसको अगर हम गुम्मा बीमारी की बात करें तो इसको पहचानना बिल्कुल बहुत आसान है। जिस तरीके, मतलब ये बीमारी आपने जिस तरीके से बीज लगाई, उसके 6 से 7 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप बात कर लो 20 से 25 दिन के बाद, अगर हमारा अर्ली वेराइटी है जो हमारा 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो 20 से 25 दिन के बाद आपका फूल आना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पौधा है उसकी पत्तियों में हरा पीला करके एक चितकबरा चितकबरा छीटा छीटा हो जाएगा, और उसी उसी तरीके से साथ साथ आप देखोगे पत्ता जो है हमारा वो कटोरी की तरह मुड़ जाएगा चारों के जो पत्ते के किनारे किनारे से। ठीक है, उसके बाद आपका जो फूल है, फूल अगर बन गया है तो उसमें देखोगे धीरे धीरे करके वो पीला पड़ने लगेगा और सूख जाएगा। तो जिस तरीके से अगर फूल सूख गया तो बाद में वो जो हमारा कैप्सूल बनता है, जिसमें हमारा दाना बनता है, वो बिल्कुल नहीं बनना शुरू होता। उसके बाद आप देखोगे कि या तो हमारा कुछ पौधा है देखने से बिल्कुल हरा भरा लगेगा, नीचे के सिरे में आप देखोगे कि कैप्सूल भी हरा भरा है, दाने भी बन रहे हैं, ऊपर जा करके गुलदस्ते की तरह एक गुच्छा बन जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे, तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना, तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
0: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
1: हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो, गर्मी में फील्ड पे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज़्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है, आप दिन और रात का तापमान देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपको अपने पौधों पे नजर आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज्यादा होता है और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
0: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और मैम अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा

0: हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जा करके देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम इनको यूज करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर ले करके आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद, जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई इवन हम जो वैज्ञानिक है वो भी हमें छिड़काव करना रहता है तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
1: तो मैम यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है, तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
1: जी मैम, तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
0: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करेंगे, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही है किसान, जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया, तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी, फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है 1-2 जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है। काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था, इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया तो काले तिल की अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था, मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा,
1: मतलब काले तिल में

0: बीमारी होती है पर थोड़ी कम।
1: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
0: जी मैम, तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
1: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाएं, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिले का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
0: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज

0: रहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है, जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्त चलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं। तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्त चलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
0: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पीठ पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पीठ पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पीठ पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
0: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जिनको डस्ट फॉर्म में मिलती हैं धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और ये यंत्र

0: चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से एक समान रूप से वितरित करते हैं
1: जी।
0: भुरकाव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुरकाव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है
1: जी।
0: इसीलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह
1: जी।
0: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हत्थे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया, तो वहाँ पे भी अलग से हम
1: डाल सकते हैं जी।
0: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
1: जी।
0: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
1: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनके प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
0: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
1: यानी समय का बहुत महत्व है,
0: बहुत ज्यादा महत्व है
1: जी।
0: उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है ठीक है, अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
1: किसी और फसल पे चला जा रहा है आपके खेत से बाहर,
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
1: जी,
0: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
1: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
0: हर एक जगह।

0: फैल सकता है उनकी सहायता से। दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
1: जी,
0: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
1: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
0: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए। ठीक है, और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है।
1: जी, डब्बे पे भी लिखा होता है, एक उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
1: जी,
0: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
1: जी,
0: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
1: जाने अनजाने तो में उसको कोई
0: उसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
1: जी।
0: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप है, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा
1: जी।
0: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
1: जी ना चलाएं
0: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
1: अगर फंस जाए, अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
1: जी। तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में दो या तीन बार या पांच बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको जरूरी है

0: कि आप कुछ मुख्य बातों पे ध्यान दें, जैसे कि नंबर वन ये है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ, हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके,
1: जी
0: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें।
1: जी
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से।
1: जी
0: ठीक है, छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें।
1: जी
0: अगर वो फट गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा।
1: जी
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वॉशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है।
1: जी
0: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, दो तिहाई भाग तक ही भरना चाहिए
1: ताकि प्रेशर बने।
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो दो तिहाई से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो,
1: जी
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी,
0: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें।
1: जी
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें।
1: जी
0: और चमड़े के वॉशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं।
1: जी
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन तेल ईंधन एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा।
1: जी
0: ठीक है, तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा,
1: जी
0: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद।
1: जी
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे, अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद
0: कर देगा। ठीक है, और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें चार स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास टू स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है।

0: इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्तिचालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़े देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को ना जमने दें, ठीक है? अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है? और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
1: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ ना मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्तचालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
1: जी।
0: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना हो फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
0: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
0: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। एआई के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
2: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
2: तो अब बारी है

0: हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम।
1: वीर कुंवर सिंह।
0: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
4: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड।
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
5: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। '1777 में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 88 की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोल कर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
6: सुना तुमने?
7: क्या?
6: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
7: हैं?
6: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
7: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
6: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
7: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया,

0: तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
1: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे ले। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करी।
2: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
3: ऐसा चाहिए कि जिसके बारे में
1: हुजूर अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
4: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है?
5: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
4: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
4: सिपाहियों को संदेश भेजो

0: आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की
0: जय! लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
2: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकाल कर बाहर करें।
3: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसान मंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद!

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अदरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया। कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा।

0: कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काटकर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
1: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये उपहार।
0: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखो शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: Yes, sir.
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा

0: गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि, जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्नी मिलेट के बारे में, और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर, जब हम बात कर रहे हैं कॉर्नी मिलेट की, तो क्या कॉर्नी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
6: देखिए, कॉर्नी, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कॉर्नी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन जन्म स्थान है, जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूंछ। तो इसकी जो बालियां होती हैं, लोमड़ी की पूंछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की, मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है, इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें, चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं। हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं। हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है, मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए। वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है, वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं, क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है, और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का सेवन करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है ही। हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
4: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कॉर्नी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए,
6: तो कॉर्नी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार होती है, अर्थात 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम, कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है, या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं।

कौनी की, तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने जुलाई अगस्त 20 सितंबर तक पक्के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5 से 10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2 से 3 बार जुताई करके पट्टा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब ये है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए, ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी न जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ हैं अगर हम परंपरागत अपनी पुरानी प्रजातियां लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है एस आई ए 3156, दूसरा है SIA 326 और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियाँ हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी 1, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ इसका जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहां पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो छिटकवा विधि से भी बुआई करके खेत में मिलाया जा सकता है, बस उथली जुताई करनी होगी वहां जो 1 इंच से गहराई पर बीज न जाने पाए। तो इस तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आता है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि ये फसलें ऐसी हैं जो कमजोर भूमि में भी हो जाती हैं, इनको कम खाद की जरूरत पड़ती है, पानी की जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा बरसात हो रहा होता है तो पानी की अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में अगर इसकी हम खेती करते हैं तो जनरली 1 सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है, और कभी कभी अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा है तो वहाँ 2 सिंचाई भी दे। तो गर्मी में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा आपको जब सिंचाई की सुविधा हो तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22 से 25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
रुपाई

0: जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में अगर ज़्यादा खरपतवार, बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियां हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहां हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहां हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से, हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं, पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है मैनुअल बिल्डर, आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का, इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है, अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें। क्योंकि इन सबका बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है, तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी की दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी की दर से व्यवहार करें तो आपकी फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सक्रिय पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके
0: किसान भाइयों के लिए एक और मेरे पास एक ऑफर है, जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार इनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, 2,000 रुपये इनके खाते में डाल देती है, जबकि 2,000 रुपये का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।
2: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन।

0: ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है घाव करे गंभीर, तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद अनु।
4: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
5: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है
4: जी।
5: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद

0: नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
1: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 EC या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्णकुंचन व मोज़ेक

0: विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्णकुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 ml प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
1: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज के वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
4: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 dose बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है, या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।

0: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूं, लेकिन मेरी बच छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बछिया आपकी बेटी की उम्र की है, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
1: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
0: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
2: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे?
0: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
1: ये फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
2: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा, आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
2: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
0: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान ले, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
2: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
2: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
1: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
2: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं, इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में ले लेंगे।
0: पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में

0: सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है। और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत? यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
1: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा। अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया। यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
1: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
0: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा। अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूं? कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर मां नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
1: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूं

0: दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
1: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है, बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
0: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौ चढ़ा लेते हैं।
1: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
2: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
0: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
1: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
0: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
2: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
0: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
2: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
0: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
2: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
1: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है। तभी सेहत सही

0: लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा।
1: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी। आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले बस घबरा जाती थी। यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि

0: टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आम परिवार क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: यूविन का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
0: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं, इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
0: और यही एक बड़ी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है, देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है, सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करे।
1: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का अधिकार नहीं है।
1: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
2: सही कहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगी। किसी ने UN कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प हैं। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव

0: की बोली कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें।
1: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दो, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चार, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। पांच, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छह, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सात, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है,

0: इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
2: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
2: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
2: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिककर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
4: CIET NCERT presents audio book Our Wondrous World, textbook of environmental studies for grade 5.
5: Page number 145, unit 5, Our Amazing Planet. About the unit. By the end of the preparatory stage, students learn about various landforms, lives and a wide range of activities around them. They also know about the sun, moon, stars and wonders of the world they live in. This unit invites students to explore the deep connection between nature and everyday life. This unit in grade 5 helps students explore the natural rhythms and deep connections that shape the life on earth through seasons, stories and journeys of birds, foods and ideas. They discover how nature, people and cultures are linked. With journaling and hands-on activities, they connect to their surroundings and understand that earth is our shared living home. At the bottom of the page, there is a picture depicting four children and several animals playing in a lush green park. Two boys and two girls are smiling and interacting with a white rabbit, a fawn, a duck and some small birds and butterflies. The background has large trees and bushes and a blue sky is visible. Page number 146. Note to the teacher. This unit consists of two chapters. Chapter 9, Rhythms of Nature, and Chapter 10, Earth, Our Shared Home. Chapter 9, Rhythms of Nature. First, Rhythms of Nature helps students observe and understand the natural rhythms of change in the world around them. Day and night, seasons, and how plants, animals, people, and places transform over time. Through journaling, activities and reflection, it encourages students to connect deeply with their local environment.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: खांसी
6: एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो।
3: खांसी खोखो खांसी।
6: टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
10: See you at the vaccination center soon.
11: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
12: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मखाना में पत्तियों पर खाद का छिड़काव एवं ड्रोन आधारित फोलियर स्प्रे तकनीक के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भवानी प्रसाद मंडल। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर भागलपुर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद।

0: मैम
1: सर आपसे सबसे पहला सवाल कि मखाना में फोलियर स्प्रे की जरूरत क्यों पड़ती है?
0: हाँ मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी किसान भाई बहनों को मेरे तरफ से नमस्कार। पहले ये जो मैम ने क्वेश्चन मुझे पूछे, फोलियर स्प्रे या पत्ती के ऊपर छिड़काव क्यों जरूरत होता है? मखाना एक ऐसी फसल है जिस जो तालाब या कोई जल भराव वाली जमीन में उगाया जाती है, और इसी समय अगर कोई खाद डाला जाए तो उसका बहुत सा हिस्सा पानी में बह जाता है या कोई दूसरा जगह चला जाता है तो नुकसान होता है। इसीलिए हम अगर देखा जाए जो मखाना का पत्ती का है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तैरती होता है पानी के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर हम मतलब डायरेक्ट छिड़काव करें खाद का, तो वो बड़ा बड़ा पत्ती तेजी से उस खाद का जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित करती है और इससे नुकसान नहीं होता है। इसीलिए छिड़काव करना पत्ती के ऊपर सबसे बेहतर टेक्निक माना जाता है।
1: सर अगर हम ये सवाल करें कि स्प्रे कब करना चाहिए?
0: जी मैम, ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है कि कब करना चाहिए स्प्रे। देखिए मखाना का कोई भी क्रॉप का हो, खासकर मखाना की, अलग अलग वृद्धि अवस्थाओं में अलग अलग पोषक तत्वों का छिड़काव करना चाहिए। इसीलिए लगभग ऐसे देखा गया है रिसर्च में कि मखाना लगाने की 35 से 40 दिन के बाद 1% यूरिया का सॉल्यूशन और साथ में 0.5% जिंक सल्फेट का अगर छिड़काव किया जाएगा, ये उसके ग्रोथ के लिए मतलब वृद्धि के लिए, मखाना के वृद्धि के लिए अच्छी होती है।
1: और जब पौधे में फूल आने लगते हैं तब भी किसान भाई बहन बड़े चिंतित रहते हैं कि अब क्या करें, आगे क्या करना चाहिए, तो ऐसे में जब पौधे में फूल आए तो किसान भाई बहनों को क्या कदम उठाने चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए?
0: जी मैम, फूल आने के समय कोई भी फसल के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उस समय पौधे को खास करके मखाना को पोटाश और बोरोन का आवश्यकता होता है। इसीलिए पोटास का कोई मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, जैसे पोटासियम नाइट्रेट, उसका 1% सॉल्यूशन और 0.1% बोरिक एसिड, खास करके बोरिक एसिड बहुत मतलब फायदेमंद होता है, इसी को स्प्रे किया जाए 1% पोटासियम नाइट्रेट के साथ 0.1% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो इससे क्या होता है फूल झड़ने का जो समस्या है वो कम हो जाता है और दाना बनने का प्रक्रिया और बेहतर हो जाती है।
1: यस सर, और अभी आपने दाना बनने की बात की, तो दाना बनने की जब अवस्था होती है तो ऐसे में आप किसान भाई बहनों को क्या सलाह देंगे?
0: दाना बनने के समय चाहिए उसको मैग्नीशियम, मतलब एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1% मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व, चाहे जिंक हो, मैंगनीज हो, उसका 0.5% सॉल्यूशन बना के पत्ती के ऊपर छिड़काव किया जा सकता है। इससे दाने का भराव जो है वो अच्छा होता है, गुणवत्ता भी बढ़ती है।
1: सर आजकल ड्रोन तकनीक के बारे में काफी जोरों शोरों से बात चल रही है, तो ऐसे में क्या मखाना में भी ड्रोन स्प्रे फायदेमंद साबित होता है?
0: हाँ मैम, जी मैम, क्योंकि आजकल कृषि में हर क्षेत्र में इसको ड्रोन को उपयोग किया जा रहा है। मखाना के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मखाना जो है वो तालाब के होती है और नहीं तो कोई जल भराव वाली जमीन में होता है, काफी बार क्या होता है उसी जगह पर जाना मुश्किल हो जाता है खाद को छिड़काव करने के लिए, तो उस समय अगर हम ड्रोन को उपयोग करें, ड्रोन कम समय में खेत का हर हिस्से पर समान मात्रा में उस खाद का छिड़काव कर सकते हैं, इससे कम लागत लगता है, कम खर्चा होता है और समय भी बचता है, इसीलिए ड्रोन काफी फायदेमंद है।
1: सर अगर नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया की क्या आवश्यकता होती है मखाना की खेती में?
0: नैनो यूरिया जो है आजकल जो फर्टिलाइजर का टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी एडवांसमेंट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो अभी चल रहा है नैनो यूरिया, और इपको के नैनो यूरिया बाजार में मतलब किसान भाइयों के लिए आसानी से मिल जाएगा, वो अगर 125 ml 10 से 15 लीटर पानी में घुल के 1 एकड़ जमीन में हम स्प्रे कर सकते हैं, और इसमें ड्रोन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए, और इससे क्या होता है वो पौधे के पत्ती के ऊपर आता है और छोटा छोटा होने के कारण मतलब वो बहुत तेजी से मखाना पत्ती उनको ले लेता है और इससे हरा भरा रहता है जो हमारे पत्तियां।
1: और अगर हम सावधानियों की बात करें तो किसान भाई बहनों को मखाना की खेती के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए?
0: जी मैम, इसमें बहुत अच्छा है कि हमको स्प्रे कब करना चाहिए, मतलब कौन सा समय को चुनना चाहिए, सावधानी क्या है, तो हम ये बोले कि जैसे अभी बहुत धूप है, इस धूप के बहुत ज्यादा धूप में छिड़काव करना ठीक नहीं होता है, बहुत तेजी से हवा चल रहा है उस समय भी किसान भाई लोग उसमें स्प्रे ना करें, और जो बारिश होते हैं तब भी स्प्रे ना करें, और सबसे उपयुक्त समय होता है स्प्रे करने के लिए वो है सुबह या शाम, इस समय करेंगे तो वो पौधे पत्ते के ऊपर रहने का टाइम मिलता है और पौधा उसको तेजी से अवशोषित कर लेते हैं।
1: सर अगर हम देखें तो आजकल हमारी जो खेती गृहस्थी है वो काफी आधुनिक हो रही है, तो ऐसे में भविष्य में क्या मखाना खेती भी आधुनिक हो सकती है और कितनी आधुनिक हो सकती है?
0: बिल्कुल मैम, ये आधुनिक होने का ही बात है कि अगर हम लोग भविष्य में सेंसर आधारित, बहुत सारे सेंसर

0: আইওটি বেস সেন্সার আর সেন্সার আধারিত পোষক তত্ত্ব প্রবন্ধন, হ্যাঁ, প্রিসিশন এগ্রিকালচার আর ড্রোন কে মাধ্যম সে যে স্প্রে আবি বাত হো রা থা, ড্রোন কে মাধ্যম সে ছিড়কাও আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কো প্রয়োগ করকে আগর হামলোক উসকে উপর ছিড়কাও আর আচ্ছা সে করে তো এ কাফি হেল্পফুল হোগা। যো ম্যানুয়াল মানে মনুষ্য সে কোই গলতি হতা হয় কোই উচা তো ও মেশিন সে উতনা নেহি হোগা আর হাম ইসকে মাধ্যম সে টেকনোলজি কো ইউজ করকে আধুনিক খেতি মাখানা কা খেতি কর সকতে হ্যাঁ আর মাখানা কা ভবিষ্য যো হ্যায় খেতি কা ও বহুত তরহ সে চেঞ্জ হো সকতা হ্যায়।
1: यस सर, सर आपने बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर आप जाने से पहले किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मैम, मैं बस जो जितना जानते थे उतना किसान भाइयों के लिए हम बताएं, अभी सिर्फ एक और दो लाइन बताएंगे उनको, उनके लिए ये है कि सही समय पर सही पोषण पत्ती बने उत्पादन का कारण, सही समय पर सही पोषण हर पत्ती बने उत्पादन का कारण, और आखिर में ड्रोन भी यूज कीजिए, ड्रोन से पोषण हर पत्ती में जान, खुशहाल किसान बड़े सम्मान। नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है किसान भाई बहनों हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी और आपको काफी कुछ जानने को समझने के लिए मिला होगा। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं RJ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में

0: हर रोज की तरह आपके लिए बातें होती हैं खास खेती बाड़ी से जुड़ी। तो आज भी हम लेकर आए हैं, आज हम बात कर रहे हैं फलों की। और फलों की जहाँ तक बात होती है तो पपीते की बात करते हैं आज हम। जी हाँ, पपीते का बीज उत्पादन के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रणव पांडे। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें पपीते की और इसके बीज उत्पादन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पपीते का उपयोग क्या क्या है।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम आपने किया कि पपीते का सबसे पहले हम उपयोग जाने तब उसके विषय में का बीज कैसे उत्पादन किया जाए।
0: जी,
1: पपीते को सभी लोग सामान्यतया से ये जानते हैं कि हम फल के रूप में जो उपयोग करते हैं तो करते ही हैं, इसको सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं।
0: हाँ,
1: जो है फल के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में राइबोफ्लेविन और विटामिन ए, विटामिन सी और इसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू पोषक तत्व तो इसमें भरे हुए हैं।
0: जी,
1: और दूसरा, इससे अन्य प्रोडक्ट जैसे जैम वगैरह भी बनाया जाता है। इससे एक और बहुत काम का प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पपेन, वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है।
0: अच्छा।
1: स्पेशली इसी से वो एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। कच्चे पपीते भी लगभग जो 3 महीना पुराना हो जाता है पपीता फल, उसका जो है चिया लगा करके उसमें लेटेक्स बोलते हैं, वो जो निकलता है दूध बोलते हैं गांव वाले उसको, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको ड्राई करके सुखा करके फिर ये पपेन बनाया जाता है। और इस पपेन का उपयोग सबसे बड़े पैमाने पर मांस को जो है मुलायम बनाने के लिए, जो मीट इंडस्ट्री है उसमें उपयोग किया जाता है कि कैसे हम उसको टेंडर बनाए रखें। च्युइंगम बनाने में इसका उपयोग करते हैं पपेन का। कॉस्मेटिक्स में उपयोग है। नेचुरल सिल्क को जो है डीगमिंग करने के लिए इसका उपयोग है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाओं के उपयोग में है। और इसी तरीके से टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग है।
0: अच्छा, तो ये
1: मेन उपयोग है।
0: तो यहाँ तक खाने से लेकर टेक्सटाइल और गारमेंट्स जो सर्विसेज है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ नया जानने को मिला हमें। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा विषय है कि पपीते के बीज उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़े एक सवाल हमारे पास आते हैं कि पपीते में जो प्रवर्धन होता है तो उसमें वो प्रवर्धन बीज से ही क्यों किया जाता है।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम। पपीता में अन्य प्रवर्धन जो है आसानी से संभव नहीं है। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो सोफिस्टिकेटेड लैब चाहिए, जिसके लिए अच्छी लैब की जरूरत होती, लेबोरेटरी की जरूरत होती है, वहाँ टिश्यू कल्चर प्लांट हम इसका उत्पादित कर सकते हैं। नहीं तो अन्य कोई और उपयोग और अन्य कोई और तरीका नहीं है जिससे हम उसका प्रवर्धन कर सके। इसीलिए पपीते के बीज का उत्पादन किया जाता है और सबसे आसानी से बीज उत्पादन करते हैं इसमें। और बीज से पपीते का हम लगभग 80% एज सच पपीता जैसे पिछली पीढ़ी का है दूसरी पीढ़ी में हम उसको पैदा कर लेते हैं। इसीलिए हम बीज का उपयोग इसमें करते हैं और बीज उत्पादन इसमें सस्ता।
0: अच्छा जी सर, और कुछ बातें जो पपीते से जुड़ी हों जो हमारे किसान भाइयों को जानना हो उसके बारे में भी बताएं।
1: सबसे पहली बात तो पपीते का जो है, जब हम उपज करने जाएंगे पपीते के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं लगना चाहिए।
0: अच्छा।
1: जमीन से जहाँ पपीता उगाया जाए, और हमारे खास तौर से बिहार में ये समस्या है। बिहार का जितने भी तराई रीजन है सभी जगह पर पपीते के उत्पादन की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वहाँ पानी लगता है। पपीते की जड़ में अगर पानी लगा तो पपीता श्योर मर जाएगा। यह पानी के लिए बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव पौधा है। तो सबसे पहला जरूरत होती है जहाँ भी पपीता हम लगाएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो वहाँ पानी ना जमे किसी भी समय पूरे सीजन में जहाँ पपीता है। या तो उसको ऊंचा करके लगाएं, मेड़ से लगाएं। सभी श्रोतागण किसान भाई जो लोग भी हैं इस बात का जरूर ध्यान दें कि पानी ना लगने पाए।
0: जी।
1: और दूसरी एक समस्या आती है कि थोड़ा सा बड़ा होने क्योंकि इसकी जड़ होती है कमजोर, फाइबरस होती है, तो क्या होता है कि ये जो है तेज हवा चलने पर गिर जाता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि हवाओं से बचाने के लिए या वायुरोधक का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी हो कि हम कभी पता चला हल्का सा तूफान आया और हमारा खेत का पपीता कहीं गिर गया, तो गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो हमें इन दो बातों को

0: वायु अवरोधक का भी किनारे किनारे उपयोग करना चाहिए और ऊंची जमीन पर इसको लगाना चाहिए। ये मूल बिंदु है जो ध्यान देने की जरूरत है पपीता के लिए।
1: जी, तो कुछ बातें थी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया किसान भाइयों की, उनके जड़ में पानी जमा नहीं रहना चाहिए और ऊंचे जगह पर मेड़ बनाकर आप उसके पौधे लगा सकते हैं। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर साहब इसके रोपाई की, बात करें पौधों की, तो क्या हम हर मौसम में इसे रोप सकते हैं या फिर कोई स्पेशल कोई मौसम?
0: हाँ, ये क्या है, पपीता हम लगा सकते हैं लेकिन हमको ध्यान देना होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है। मुख्य मौसम इसको पपीता लगाने का जो है बरसात का समय माना जाता है, क्योंकि जहाँ पानी समस्या होती है नहीं है, तराई रीजन नहीं है, वहाँ बरसात में लगाने, बरसात में लगाने से पौधे सर्वाइवल का रेट ज्यादा होता है। या फिर जो हम मार्च फरवरी मार्च में इसको लगा सकते हैं, जो और फिर एक समय है सितंबर अक्टूबर भी लगा सकते हैं, लेकिन सालों भर भी हम लगा सकते हैं, सिर्फ हम पौधे को बचा पाए। तो इसके हिसाब से पॉजिटिव चीज है कि हम किसी भी समय इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी में।
1: जी, और अगर बात करते हैं मिट्टी की, तो किस प्रकार की मिट्टी में हम इसकी रोपाई कर सकते हैं?
0: मिट्टी तो पपीते के लिए जो है हमें जैसे अन्य फसलों के लिए जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से सैंडलोम सॉइल तो अच्छी मानी जाती है इसके लिए। जो मिट्टी हमारे यहाँ है, इन सब मिट्टियों में हम पपीता को उगा सकते हैं। पपीता को उगाने के लिए जो है ये है ध्यान देने की जरूरत कि वह उर्वर युक्त हो, इसमें अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कार्बनिक खादे हैं वो ज्यादा मात्रा में हो, वहाँ ये अच्छे से जो है फल देता है और उसमें अच्छी इसकी बढ़वार होती है। और सैंडी लोम सॉइल जो बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें हम सभी फसलों की खेती करते हैं, उसी वो सॉइल उसके लिए अच्छी मानी सॉइल अगर यूज कर तब भी हमको इसको उगा सकते हैं।
1: जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि, और अगर हम बिहार क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या कुछ संभावनाएं हैं पपीते को लेकर, उसके बारे में?
0: जी, जहाँ बिहार में है संभावनाएं, ऐसा नहीं है कि सब सब तराई रीजन में है, बिहार में भी कुछ ऊंचे रीजन भी है जहाँ हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। ऐसा में बिहार में उत्पादन कम होने का कारण यही था कि मेनली बाढ़ग्रस्त एरिया था, धीरे धीरे बाढ़ वाला स्थिति कम होती जा रही है, वो सीमित एरिया में है, लेकिन जिन एरिया में बाढ़ आता उधर हम पपीता ना उगाए भी तो ऐसी जगह उगाए जहाँ बाढ़ ना आ पाए, लेकिन हम उस एरिया में कोशिश करें ना उगाए, बाढ़ग्रस्त एरिया जो नहीं है वहाँ हम पपीता उगा सकते हैं ऊंची जमीन पर और बहुत आसानी से उगा सकते। किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो ऊंची जमीन पर उगाएं इसको।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है कि अगर हमारे किसान भाई जो है वो व्यापार के तौर पर इसकी खेती कर रहे हैं, तो क्या सही समय होता है जब इसकी वो तुड़ाई करें बाजार तक ले जाने के लिए?
0: अच्छा, सही समय, जी जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही, वो तो सीड उत्पादन का भी एक विषय होता है। इसमें क्या है कि हम ये देखें, जब पपीता का फल अपने साइज का तो जब पता नहीं चलता कब मेच्योर हुआ, तो पता कैसे चलेगा? क्या होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर में, हरे कलर का होता है
1: जी,
0: जब
1: जी।
0: वह ग्रीन का रंग हल्का सा फीका होने लगे, अपना कलर जैसे ही वो बदलना शुरू करता है, यह समझ जाना चाहिए कि वो मेच्योर हो गया है।
1: अच्छा,
0: उसको कलर ब्रेक स्टेज बोलते हैं, उस समय ही हम हार्वेस्ट करके दूर तक ले जा सकते हैं पपीता, तब वो मेच्योर हो जाता है।
1: मतलब व्यापारिक तौर पर अगर हम तोड़ना चाह रहे हैं उसे, तो हल्के हरे रंग का वो जब हो जाए,
0: हाँ, जब हर रंग उसका जैसे ही बदलना शुरू होता है तुरंत हम उसको तोड़ लें, हम उसको दूर तक भी ले जा सकते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी पपीते से जुड़ी और इसके बीज उत्पादन से जुड़ी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, और आशा करते हैं किसान भाइयों कि इससे बहुत कुछ आपकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम और FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी।

0: बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो, खांसी को खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go.
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम चुनौती का सामना करना।
1: ये एक छोटी सी लड़की के निश्चय की सच्ची कहानी है। जब सरस्वती 12वीं कक्षा में थी तब अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो एक दुकान में काम करते थे। उस समय उसका भाई लक्ष्मण 8वीं कक्षा में था। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां जड़ सी बन गई थी। ऐसा लगा कि उनका जीवन एकदम रुक गया हो, क्योंकि परिवार में वे एकमात्र कमाऊ व्यक्ति थे। सरस्वती ने अनुभव किया कि उसे ही कुछ करना होगा। उसने निश्चय कर लिया और वो नौकरी ढूंढने लगी, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की नौकरी क्यों ना हो। अपनी प्रधानाध्यापिका की सहायता से उसे एक महिला के घर आया की नौकरी मिल गई। क्योंकि उसका स्कूल सुबह 6:30 से प्रारंभ होकर दोपहर 12 बजे तक रहता था, इसलिए वो 12:30 तक काम पर पहुंच जाती थी। उसकी मालकिन ये जानते हुए कि वो पढ़ती है, उससे दयापूर्ण व्यवहार करती थी। सरस्वती बड़े प्यार से उनके बच्चे की देखभाल करती थी और थोड़े ही दिनों में वो उनसे इतना हिल मिल गई कि परिवार का एक सदस्य मानी जाने लगी। उसका व्यवहार बड़ा मृदु था। घर के काम वो बड़े ध्यान और सावधानी से करती थी। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, पर उसकी माँ भी अचार और पापड़ बनाकर बेचती थी, जिससे उन्हें कुछ और आमदनी हो जाती थी। उसी शहर में वो एक छोटे से घर में रहने लगे। उस घर में एक कमरा था और पानी की कोई व्यवस्था ना थी। उन्होंने कठिनाइयों का सामना बड़े धैर्य से किया। सरस्वती रात को जब 9 बजे लौटती तो बिल्कुल थकी हुई होती। उसकी माँ उसके आने की राह देखती रहती। फिर दोनों मिलकर खाना खाते समय सरस्वती अपनी माँ को पूरे दिन की बातें बताती। उसके बाद वो अपने स्कूल का काम करती और फिर

आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाती। ये बहुत कठिन काम था, पर न जाने कहां से उसको शक्ति मिलती थी। उसका भाई 8वीं कक्षा में ठीक से पढ़ रहा था। वो अपनी बहन के कामों की तरफ ध्यान तो नहीं देता था, परंतु वो किसी भी रूप में उनके लिए समस्या नहीं था। उल्टे वो घर के कामों की दौड़ धूप में तथा पापड़ और अचार को बेचने में अपनी माँ की सहायता करता था। जल्दी ही सरस्वती ने अच्छे अंक प्राप्त कर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अपनी मालकिन की सहायता से उसे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी भी मिल गई। उसके दुर्दिन अब समाप्त हो रहे थे, लेकिन उसे अब भी कई घंटों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और नई बातें सीखनी पड़ती थी। जल्दी ही वो इतनी कुशल, ईमानदार और अच्छी सिद्ध हुई कि हर कोई उसे चाहता था। 2-3 साल के अंदर उसने प्राइवेट रूप से बीए की परीक्षा भी बड़ी सफलता से उत्तीर्ण कर ली। अब वो एक स्नातक थी। सदा से ही उत्साही, उसने अपने मोहल्ले और गरीबों की आवश्यकता पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। समय मिलने पर वो अंध विद्यालय जाती और नेत्रहीनों को पुस्तकें पढ़कर सुनाती। उसने समाज में हो रहे अन्याय, कुरीतियों तथा नागरिकों के व्यवहार पर लेख लिखे और समाचार पत्रों में छापने के लिए भेजे। उसका जीवन पूर्णता लिए हुए था। इसी बीच वो चुपचाप एमए की तैयारी भी कर रही थी। किसी समय सरस्वती को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण ने अपनी 12वीं की परीक्षा 72% अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी। सरस्वती और उसकी माँ दोनों ही प्रसन्न थे, किंतु अब लक्ष्मण की आगे की पढ़ाई को लेकर सरस्वती को बहुत चिंता थी। लक्ष्मण तो विज्ञान के महाविद्यालय में दाखिला लेकर बीएससी करना चाहता था, किंतु अनेक स्नातकों को बेरोजगार देखकर सरस्वती को लगा कि लक्ष्मण को कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिससे उसे नौकरी मिल सके। उसने अपने मित्रों से सलाह ली और उन्होंने उसे सुझाया कि लक्ष्मण के लिए उचित यही होगा कि वो शहर की पॉलिटेक्निक संस्था में प्रवेश ले ले। सरस्वती एक बार उस संस्था को देखने गई और उसी समय उसने निर्णय ले लिया कि यही लक्ष्मण के लिए उचित स्थान था। वहां 3 वर्षों के बाद एक डिप्लोमा दिया जाता था, परंतु अंत में यांत्रिक तथा विद्युत कारखानों में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता था। लक्ष्मण को विश्वास दिलाना बड़ा कठिन था, क्योंकि अन्य कई व्यक्तियों के समान वो भी यही सोचता था कि कॉलेज की उपाधि कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और उसके सारे मित्र कॉलेज में प्रवेश ले रहे थे। परंतु सरस्वती के मनाने का एक अपना ढंग था। वो अपने निश्चय पर अटल रही। उसने लक्ष्मण से आग्रह किया कि वो एक बार स्वयं उस स्थान पर जाए। वहां जाकर देखने पर लक्ष्मण ने भी प्रवेश लेना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे मशीनों से काम करना बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि उसे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले थे, इसी कारण उसे प्रवेश के साथ छात्रवृत्ति भी मिली। सरस्वती फूली ना समाती थी। एक ही साल में लक्ष्मण ने अनुभव किया कि उसने सही चुनाव किया था, क्योंकि वहां उसने तरह तरह की कुशलता प्राप्त की और पाठ्यक्रम के समाप्त होते ही उसे एक ऐसी फर्म में शिक्षार्थी के रूप में ले लिया गया जो मशीन के पुर्जे बनाती थी। वो बड़ा अच्छा मैकेनिक था और उसकी काफी पूछ थी। हमारे देश को

मैकेनिक, फिटर, बिजली मिस्त्री जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मेज कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले उन व्यक्तियों से किसी भी बात में श्रेष्ठ नहीं होते जो हाथों से काम करते हैं। सरस्वती ने भविष्य के और सपने संजोए थे। उसे आशा थी कि भविष्य में वो अपनी स्वयं की एक छोटी सी दुकान खोल सकेगी, क्योंकि वो जानती थी कि सरकार उन उद्यमशील उत्साही नौजवानों को कर्ज दे रही है जो अपना छोटा उद्योग प्रारंभ करना चाहते थे। उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने भाई की अवश्य सहायता करेगी। इस बीच सरस्वती अपने जीवन से संतुष्ट थी। उसका जीवन उसके टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी को लेकर, समाज सेवा को लेकर, अपने भाई की नौकरी तथा घर में आती अतिरिक्त आय को लेकर संतुष्ट था। अब वो थोड़े बड़े घर में रहने लगे। उसकी माँ शरीर से कमजोर थी, पर उनका दिल कमजोर ना था। उन्होंने पापड़ तथा अचार बनाकर बेचना बंद कर दिया, पर अपने परिचितों के लिए अवश्य बनाती, और अपने बच्चों के लिए खाना बनाना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो भी अपनी माँ के हाथ से बने खाने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते। माँ के हाथ से बने खाने के सामने उनको हर वस्तु फीकी लगती थी।

0: क्या ये सच नहीं है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो यही चाहते हैं कि कॉलेज जाएं, उपाधि प्राप्त करें और फिर नौकरी ढूंढें? क्या ये भी सच नहीं है कि वास्तव में विश्वविद्यालय की उपाधियां हमें किसी खास काम के लिए तैयार नहीं करती? ये एक आम विचार है कि बढ़ई या मोटर के पुर्जे के मैकेनिक होने की अपेक्षा किसी बैंक में क्लर्क होना अच्छा है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल बेतुकी बात है? हर समाज को अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले नागरिकों की आवश्यकता होती है, और यदि तुम हाथ के कार्यों में कुशल हो तो तुम निसंदेह एक अच्छे बढ़ई होने का अथवा बागवानी का प्रशिक्षण ले सकते हो। इस प्रकार के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कई संस्थाएं हैं। जब तुम 12वीं या 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लो तब ये बात तुम्हें ध्यान रहे, क्योंकि फिर तुम्हें अपने लिए उपयुक्त पेशा चुनना होगा।
1: चुनौती का सामना करना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।

0: बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरवी वर्मा। सर, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं?
4: देखिए, ये परवल जो है, जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाले जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है। और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय और नहीं सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं, तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है। और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन A, B और C पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं लो एनर्जी के कारण जो है, तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं जॉइंटिस सब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है, तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है। और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें, इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
3: जी सर, लाभदायक होती है लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
4: हाँ, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परवल की खेती में। देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पे होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा। और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है। और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है। और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है, यानी 9 पौधे अगर आप मादा आप ले जाते हैं तो एक पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए। इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत

0: दूर 1.5 किलोमीटर दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आ गई प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और 1 जो है नर, तो इससे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं, तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है, एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, अब तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ये लंबा समय लेता है, चूंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है, ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा, कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
1: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें।
0: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है, अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं, तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो जो साल भर पुरानी हो गई हो, ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा, तो हमेशा आपको मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको 1 ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है, दूसरी बात उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50 टू 60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए, और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का 8 जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, 8 के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, 8 के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं हैं उसको आपस में मोड़ दीजिए, और बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी, और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे, तो वो जो है आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको 8 के आकार में बना लिया, और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं, हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोवत मत करिए। अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना

0: ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा। आप कहें कि हमने पौधा लाया था, स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपेगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते जैसा पहले बता दिया था। तो इसका प्रोपेगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन वन ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं। तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गए या खत्म हो गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने बताई, तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है। अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना। आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन ख़त्म हो रही है, तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या जनवरी, सितंबर या अगस्त, कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए दो तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए, तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा। उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
1: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
0: हाँ, देखिए इसका जो है, जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर काट करके वाइन वैसे भी लगा दीजिएगा या उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट होकर के और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है। तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसा हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें दो तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2-2 मीटर दूरी पर लगाइएगा, तो 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पर अपनी रूट्स को ज़मीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है 2 मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5,000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5,000 कटिंग जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं, इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं, तो लगभग 2,500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लीजिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वेराइटी आपको मिल जाती है तो।
1: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की। तो
0: हाँ, देखिए

0: अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे। और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि ये चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है। हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस या 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं, तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
1: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
0: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें, ये ज़्यादा उपजाऊ हैं और ज़्यादा आपको उपज देंगी, आपके लिए लाभदायक होंगे।
1: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचें?
0: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है, ये जो जैसे हालांकि इसमें तो कॉटिलेडन नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलेडन निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है, और दूसरी समस्या जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें ये जो है फ्रूट फ्लाई है उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है, तो ये दोनों समस्याएं हैं। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, एक एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है, तो इससे होता क्या उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम

0: ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट का, स्टेम रॉट की जो है, कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है। और रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहां से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें। कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि 1 साल लगाते हैं और ये ऐसी फसल है कि 1 साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि 1 साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है। तो ये बात हमको ध्यान देखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पर जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें। फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे, ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए। और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या ना ही आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं। आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इससे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है। तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
1: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो, इसके प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए, जो 9:1 में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी, जो आपको 8 महीने तक देती है और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है, तो इससे आप जो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते हैं।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe.

0: and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी FM ग्रीन, और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहाँ पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं, और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद अनु।
2: मैम, बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
4: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
2: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं, और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
4: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं, और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है, और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम, ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी, तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे। और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे NRC सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है। इसका कुछ करैक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि, कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
2: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
4: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में, उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें, फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे, तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे। इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है, या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें। उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीव

हो उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं, उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छाह में फैला देते हैं, अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं, पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको लाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं, जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं, उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं तो इसमें पूरे बैग में छेद की ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने का आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं, उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर लेते हैं या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग लाते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते थे, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 सरा हुआ गोबर लेते हैं दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं, और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले लीजिए, सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको यदि 2 साल सड़ा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं, ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है ये सब है तो वो सब को हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे, निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं, केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 ग्राम और 1 लीटर पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं, फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग
तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग कर दें, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका

0: केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में, तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह से ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल देते हैं, और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े, या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं, सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए। इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
1: मैम, केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
0: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग दोसा सरा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है, वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को जैसे कि सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं, तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे, 1 भागिए लेंगे। और यदि हमारे पास 2 साल से पुराना गोबर और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं। और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवीकृत करना, ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
1: और अंत में मैम, मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये आपको बता दें, मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है, कीटाणु है, उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है। तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का, या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट, वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वो ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वो पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है, जो हमारा फसल कक्ष है, उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बेंडाजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें, ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा, छुछुंदर, गिलहरी है, ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से, गिलहरी से, ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीके का है।

0: कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा, जैसे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेजी से लंबा होता है फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो कोप्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है निकल रहा है तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि
1: नमस्कार किसान भाई बहनों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम उन्नत कृषि 90.8 एफएम ग्रीन पर, जो कि है हरियाली से खुशहाली तक। किसान भाई बहनों, खरीफ का मौसम आ चुका है और हमारे खेतों में बुआई की तैयारियां अभी बिल्कुल जोरों पर है। और जब बात खरीफ फसलों की होती है तो सोयाबीन का नाम आता है, जो कि प्रमुख दलहनी और तिलहनी फसल है। और अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन न केवल कम लागत में सबसे बढ़िया मुनाफा देता है, बल्कि हमारी मिट्टी की सेहत को भी काफी हद तक सुधारती है। लेकिन अक्सर हमारे किसान भाई बहन कुछ छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी पैदावार नहीं ले पाते हैं, उनका मुनाफा कम हो जाता है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। आज इसी विषय पर पूरी वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम आप हैं अनुवांशिकी पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू उमा, नमस्कार सभी श्रोताओं, किसान भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
1: मैम सबसे पहले तो आप हमें सोयाबीन के बारे में कुछ जो जरूरी बातें हैं वो बताइए।
2: हाँ बिल्कुल, तो जैसे सोयाबीन को, जैसे आपने अभी बताया भी कि ये प्रमुख दलहनी और तिलहनी फसल है, तो इसमें हमारा जो प्रोटीन की मात्रा होती है जो 40-42% तक होती है और तेल की मात्रा जो होती है वो 20% पाया जाता है। और अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे शाकाहारी लोग होते हैं जो मांस मछली नहीं खाते, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम सोना उगाने वाला पौधा भी कहा जाता है। और जैसे हम अगर बात करें कि किन किन खाद्य पदार्थों में हम इसका सोयाबीन का उपयोग करते हैं, तो जैसे हम सोयाबीन का ऑयल तेल अभी मार्केट में चल रहा है, उसके बाद जैसे सोया चंक्स हमारा प्रोसेस्ड फूड आता है जो आप हमारे पुलाव में, उसके बाद उसमें सब्जियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप देख लो तो टोफू नाम से सोयाबीन का एक पनीर आता है, और सोया मिल्क, जैसे जो लोग होते हैं जिनको गाय और भैंस के दूध पचती नहीं है, उनको हजम नहीं होती, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो उस केस में ये सोया पनीर और सोया मिल्क का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद अन्य उत्पाद हो गए, जैसे सोया सॉस हो गया, सोया आटा हो गया, सोया दही हो गई। और उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ये हमारा सोने से मतलब सोना उगने वाला पौधा क्यों कहते हैं, तो सबसे पहली बात तो बात की जाए कि हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जैसे एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन होता है उसको इसके रूट में एक मौजूद जीवाणु जो होता है वो राइजोबियम, वो आपको नाइट्रोजन लेकर के एटमॉस्फेयर से उसको सॉइल में फिक्स करता है, जमा करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये कम लागत में आपका अधिक लाभ भी दिलाती है। कैसे, आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन हमारे मिट्टी में ये क्रॉप अपने आप से ही नेचुरल तरीके से जमा कर देती है, तो किसान भाई सबसे ज़्यादा यूरिया के उपयोग करते हैं, और वो भी किस लिए डालते हैं, आपका नाइट्रोजन की पूर्ति को, कमी की पूर्ति करने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की जो यूरिया की मात्रा है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो इससे कम लागत लगेगा और अधिक से अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं।
1: जी मैम,
2: और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे आप तेल निकालने के बाद खली जो बच जाती है, तो वो खली में भी बहुत अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसको आप चारे के रूप में मछलियों को दे सकते हैं, मवेशियों को डाल सकते हैं, मुर्गियों को डाल सकते हैं। ठीक है
1: जी, तो ये तो मैम आपने बताया सोयाबीन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हमें दी मैम, लेकिन हमारे किसान भाई बहनों के मन में जो सवाल आते हैं कि सोयाबीन के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मौसम क्या सही रहता है, तो इस बारे में आप हमें जानकारी दीजिए।
2: बिल्कुल, मैं ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा किसान भाई बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी खेती का पहले नींव रखा जाता है कि सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा फसल कौन सा है और कौन सी मिट्टी में हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम जब खेत का चुनाव करेंगे तो अच्छे जल निकासी वाले दोमट भारी काली मिट्टी वाले ही खेत का हम चुनाव करेंगे, सबसे प्रमुख बात। उसके बाद आप

0: देखोगे मिट्टी आजकल हम लोग जांच करते हैं कि पीएच कितना है, ईसी कितना है, और हमारा जो बीएयू का जो हमारा कृषि वाहन भी है उसमें भी मिट्टी जांच के बहुत सारे आप देखोगे कि तरह तरह की तकनीकें हैं। तो जो भी है वो अपने जिनके पास अभी तक पता नहीं है कि मिट्टी का कितना पीएच है, ईसी है, क्या क्या उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम कितना है, तो वो हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के उस वहां से भी अपनी मिट्टी जमा करके और अपने खेत की जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो पीएच हमारा जैसे 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। उस और जो हम टेम्परेचर देखते हैं खरीफ में मौसम में, ऐसे भी आप देखोगे तो 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाती है, ये भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 25 से लेकर के 27 डिग्री है। तो ये उपयुक्त टेम्परेचर है इस फसल के लिए। और प्लस जैसे हमने बात करी बारिश की, तो 750 से लेकर के 1000 मिलीमीटर का जो बारिश है उस वैसी जगहों के लिए भी ये फसल बहुत उपयुक्त है।
1: मैम आप हमें ये बताइए कि जब हमारे किसान भाई बहन सोयाबीन के लिए खेत की तैयारी करते हैं तो उन समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, जैसे अब तो हमने खेत के चुनाव कर लिए, लेकिन खेत की तैयारी, जैसे ये मैंने आपको बताया कि खरीफ मौसम में हम इस फसल को लगाते हैं, तो जब हम खेत की तैयारी करेंगे तो इस समय आप देखोगे कि मिट्टी बहुत गीली हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, चटचटी हो जाएगी, तो हमारे जो भी कृषि यंत्र है उसमें सटने का ये एक आप देख लोगे कि बहुत मिट्टी सट सकती है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम खेत की तैयारी, हमें पता है कि हमने खरीफ में सोयाबीन लगाना है, खेत की तैयारी हम गर्मियों के मौसम से ही शुरू कर देंगे, हमारा खरीफ आने से पहले ही। सबसे पहले हम खेत में बढ़िया से गहरी जुताई कर लेंगे ताकि जितने भी हमारे खर पतवार और मिट्टी से रिलेटेड जो भी हमारे कीटाणु विषाणु और जो भी हमारे आपके बीमारियां जो भी होंगी, कीट वगैरह, वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2-3 बार, जैसे आपने एक गहरी जुताई करने के बाद 2-3 बार लगातार कल्टीवेटर चला चला करके हमें मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है, एकदम ऐसे हथेली में आप छू करके डालोगे तो बिल्कुल लगना चाहिए कि बलवाई मिट्टी है। तो हमारा जो खेत है वो हमारा तैयार हो गया। और सबसे बड़ी आप ध्यान दोगे कि बारिश का मौसम है, कोई भी फसल लगाएंगे अगर समतल भूमि है या थोड़ा सा गड्ढा है तो वहां पानी जमने का एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिज एंड फरो, जिसको आप बोलते हो आपके बीच में मेड़ और नाली के नाम से बहुत प्रमुख है, तो मेड़ या नाली, या नहीं तो ब्रॉड बेड फरो, इसको भी हम इस्तेमाल करके और बुआई कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी पानी रहेगा वो निकासी होकर के नालियों में जम जाएगा और हमारे जो पौधे का खरीफ में जो परेशानियाँ आती हैं जड़ सड़ने की, उनसे बचाव हो जाएगा।
1: यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो जल निकासी है वही पौधे की जान है, वही फसल की जान है।
0: बिल्कुल।
1: तो मैम अब आप हमें ये बताइए कि हालांकि बाजार में तो बहुत सारी किस्में मौजूद है, लेकिन हमारे किसान भाई बहन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें?
0: हाँ बिल्कुल उमा, सो किस्मों का चयन मतलब आप देखोगे क्षेत्र के हिसाब से है। बहुत सारी वेराइटीज़ जो हमारी निकलती है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रिलीज़ होती है, कुछ होती हैं जो सिर्फ नॉर्थर्न ईस्टर्न उस तरीके से होती हैं। तो हमारे लिए सबसे उपयोगी है कि ये फसल हम खरीफ में लगा रहे हैं, खरीफ का मौसम हमारा 2 से 3 महीने का ही होता है, ताकि हम इस क्रॉप में, एक तो हमारा ये 120 से 150 दिन का अवधि का फसल है, तो हम इसमें वैरायटी उसी के हिसाब से चुनेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जैसे JS 335, JS 95-60, JS 20-29, JS 20-34, ये सारी आपकी कम समय में पकने वाली वैरायटी हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि तो जब भी आप बीज खरीदो तो अपने रखे हुए बीज को कभी मत इस्तेमाल करें, क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे कि दलहनी और तिलहनी, क्योंकि मैं इसको कह रही हूँ दलहनी तिलहनी दोनों हैं, तो तिलहनी फसलों के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक साल का बीज में जैसे सपोज आपको 80% जर्मिनेशन आया, नेक्स्ट ईयर जब उसी को आप यूज़ करेंगे तो आपका जो जर्मिनेशन की मात्रा है वो घट जाएगी, हो सकता है 7% हो जाए, प्रतिशत हो जाए। तो हमेशा जो आप अपना बीज खरीदे वो हमेशा प्रमाणित जो सर्टिफाइड सीड है वहीं से खरीदे, प्रमाणित जो संस्थान है वहीं से आप खरीदे। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी कुछ ऐसी मैदानी जिलों के लिए कुछ

0: बिहार के दक्षिण और पश्चिमी मैदानी जिलों के लिए कुछ वैरायटीज हैं अनुशंसित, जैसे आपका RSC 10-71, RSC 10-52, उसके बाद कुछ वैरायटी हैं आपकी जो PS 1347, जिसको हम पंत सोयाबीन 1347 के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका मोजैक वायरस, जो सोयाबीन में बहुत बड़ी बीमारी आती है उससे उसका प्रतिरोध है ये वैरायटी अगर आप देखोगे तो। उसके बाद आप मैक्स 1407 1407 भी लोगे, वो भी आपका 100 दिन से 104 दिन में पक जाती है। और ये जो है इसमें जैसे फलियां पक जाने के बाद आप देखोगे कि जो अंदर के दाने होते हैं झड़ने लगते हैं, जिसको आप सेटरिंग कहते हैं, पॉड सेटरिंग। तो ये इस तरीके की जो दाना झड़ने की समस्या है वो इस वैरायटी के साथ मैक्स 1407 के साथ नहीं आएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारी वैरायटी है SL688, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए बहुत पॉपुलर वैरायटी है। उसके बाद जैसे कि आप देख लोगे कि हमारा 95 से 100 दिन की एक वैरायटी है JS 335, JS 97-52, ये जो वैरायटी है हमारी पूरे भारत के लिए में उगाई जाती हैं। अब जैसे जनरली अभी मैंने आपको बताया कि 100 से 120 दिन में ये फसल आपकी बन के तैयार हो जाती है, तो किसान भाइयों अगर आप इसको खरीफ में लगाते भी हैं तो बेझिझक आप लगा सकते हैं, क्योंकि 3 महीने में आपकी फसल पक के तैयार हो जाएगी। तब तक आप जैसे रबी क्रॉप लगाना चाह रहे हैं, रबी सीजन में आलू लगाएं, सरसों लगाएं, गेहूं लगाएं, तो ये आप एकदम बिल्कुल समय पे लगा सकते हैं। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम इस बात पे कि किस्मों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए, और अगर आप प्रमाणित बीज ले रहे हैं तो हमेशा किसी भी नजदीकी ब्लॉक कृषि कार्यालय से लीजिए, हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से लीजिए, या प्रमाणित बीज केंद्रों से ही खरीदें तभी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी वैरायटी, जैसे आप एक देख लो बिहार झारखंड के गया औरंगाबाद नवादा जिले में एक वैरायटी है बिरसा सोया 4 के नाम से है, ये भी बहुत पॉपुलर है हमारे बिहार के किसानों के बीच में।
1: जी मैम, ये तो किस्मों की बात हो गई, और जब हम बीजों का चयन कर लेते हैं उसके बाद हम हमारे किसान भाई बहन क्या करते कि सीधे उसका बुआई कर देते हैं, तो मैम क्या बुआई से पहले बीजोपचार भी जरूरी होता है और क्यों जरूरी होता है?
0: बिल्कुल, बीज उपचार इसीलिए करना है क्योंकि आप देखोगे कि गर्मी और गर्मा सीजन में और रबी सीजन में बीज लगाने से पहले उपचार करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि खरीफ में, क्योंकि खरीफ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मिट्टी में भी दबी हुई होती हैं, तो इसीलिए बीज उपचार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और उसके बाद अगर हम जब बात करें बीज उपचार की, तो हम इसमें याद रखते हैं सोयाबीन के केस में FIR, एफ से फंगीसाइड हो गया फफूंदनाशी, आई से इंसेक्टिसाइड हो गया कीटनाशी, और आर से हमारा राइजोबियम। तो अब अगर हम बात करें कि फफूंदनाशी का, तो जिसमें हम ट्राइकोडर्मा, कार्बन डजीम, थीरम वगैरह का उपयोग कर सकते हैं फफूंद से बचाव के लिए 3 ग्राम प्रति ग्राम ऑफ बीज दर से। और अगर हम कीटनाशी की बात करें तो हम थियामेक्सोसम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कीटों का बचाव करने के लिए, जो शुरुआती दौर पे फसल पे मिट्टी के द्वारा अटैक करते हैं, तो उसकी मात्रा हम 3 मिलीलीटर प्रति ग्राम बीज के दर से रख सकते हैं। उसके बाद जब हम राइजोबियम की बात करते हैं, तो हम एक सोल्यूशन बनाते हैं राइजोबियम प्लस फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग कल्चर का, जो PSB के नाम से मार्केट में किसान भाइयों को पता होगा, राइजोबियम प्लस PSB कल्चर, इन दोनों को हम 5-5 ग्राम 10 ग्राम का एक घोल बना लेते हैं और उसको प्रति ग्राम ऑफ बीज के साथ हम उपयोग में ला सकते हैं। या अगर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल करेंगे तो उसको 3 ग्राम प्रति केजी ऑफ सीड्स के इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहनों जैसे कि मैम ने बताया FIR, इस फॉर्मूला को ज़रूर याद रखें। और मैम आप हमें ये बताइए कि बुआई का सही समय क्या होता है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे खेत की तैयारी हमें खरीफ आने से पहले कर लेनी है, उसी तरीके से खरीफ आने के जस्ट तुरंत बाद हमें बुआई नहीं करनी है, हमें थोड़ा वेट करना है और उसके बाद प्री मानसून जैसे बोलते हो, प्री मानसून सोइंग, मानसून से पहले की तो

सोइंग बिल्कुल नहीं होनी है कि हल्की सी झिसी बारिश हुई और हमने लगा दिया है कि भाई खरीफ शुरू हो गया। नहीं, जब तक एक पहली अच्छी बारिश ना हो जाए, कम से कम 4 से 5 इंच नमी जो आप कहते हो, उतनी बारिश अगर ना हो जाए तब तक आप सोयाबीन की बुआई ना करें। और इसकी अगर बुआई का आप उपयुक्त समय देखा जाए तो ये हमारा जून का अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई का प्रथम सप्ताह है। किसी वजह

0: जिससे उन्हें और अधिक मुनाफा हो सकती है। तो आप इसको अंतर फसल पद्धति भी अपना सकते हैं कि सोयाबीन की 4 लाइन लगाने के बाद आप 2 लाइन अरहर की लगा दें या 2 लाइन मक्का की लगा दें, 2 लाइन ज्वार की। मतलब 4 लाइन आपका मेन क्रॉप सोयाबीन रहेगा, उसके साथ आप 2-2 लाइन किसी भी क्रॉप के लगाएं जिसके साथ आप अंतर फसल लगाना चाह रहे हैं, अरहर हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। तो इस तरीके से आपको डबल मुनाफा हो सकता है।
1: जी मैम, अब बात करते हैं कटाई की, तो फसल कटाई का सही समय क्या होता है?
0: बिल्कुल, एक बात और बताऊंगी मैं उमा कि जैसे फसल कटाई से पहले आप देखोगे कि जैसे हर फसल में कुछ ना कुछ कीट और जो बीमारी बोलते हैं उसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं। तो हमारे सोयाबीन में आप देखोगे कि खरगोश की और चूहे की ये परेशानियां बहुत हैं, जो आम तौर पे हम देखते हैं हमारे फील्ड पे खेतों में चूहे की परेशानियां बहुत होती हैं। तो स्पेशली जब आपका पॉड बन जाता है, क्योंकि पौधे की हाइट आप देखोगे ना बिल्कुल एकदम गुलदस्ते की तरह एकदम छोटा होता है, बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो चूहे जैसे हरी हरी पॉड बनना शुरू हो जाती हैं, फलियां तैयार हो जाती हैं, उस समय चूहे का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। तो किसान भाई ये करे कि मेड़ में कहीं कहीं आप चूहे मारने की जो गोलियां होती हैं 2-3 करके आप उसको चारों बगल से रख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको चूहे की प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकता है। और जहां तक की बात है हार्वेस्टिंग कब करें, जैसे आप देखोगे हरी पत्तियां पीली पड़ के सूखने लगी हैं, जो पॉड आपके जो हैं वो हरे हरे पॉड जो हैं आपके सूख करके भूरे हो गए हैं, और जैसे आगे से पॉड जो है आपका चटकने लगा है, उसका मुंह खुलने लगा है, तो उस परिस्थिति में आपकी जो पौधा है वो बिल्कुल कटाई करने के लिए तैयार है। आप पौधे को कटाई करके आप थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जा करके 1-2 दिन छोड़ दें और उसके बाद फिर आप उसको थ्रेशिंग कर सकते हैं, या आप मैनुअली अगर पिटाई करके भी उसका थ्रेसिंग कर रहे हैं लकड़ी के बैट से, तो उसमें बिल्कुल हल्के हाथों से करें ताकि आपके बीज को कोई नुकसान ना आए, बीज टूटे ना, जिससे मार्केट वैल्यू उसकी घट ना जाए।
1: जी मैम, तो अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं उनको यही बोलूंगी कि हमेशा जब भी कोई भी फसल यूज करे तो खेत का चयन बहुत सावधानी से करनी है, उन्नत बीजों का चयन करना है, बीज उपचार करना जरूरी है, और वैज्ञानिक तकनीक तो जरूर आप लगाएं। हमेशा लाइन सोइंग करें, पंक्ति से पंक्ति की सोइंग करें, ताकि कम लागत में दुगना पैदावार आपको निश्चित रूप से मिले।
1: जी, तो मैम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सी बातें बताई और ये हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा, जय हिंद जय किसान।
1: तो किसान भाई बहनों, हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं या फिर सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी, एक खांसी, दो खांसी, तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमारा यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और जी हाँ, हम लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी उपयोगी बातें। तो आज भी एक ऐसे ही विषय को हम अपने उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं, और हमारा विषय है मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का पहचान एवं इनका

0: नियंत्रण। और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह और सर वैज्ञानिक हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फॉल आर्मी वर्म है ये मक्के में किस सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अमूमन आप किसान भाइयों, जो हम लोग बिहार में देखते हैं कि दो सीजन में मक्के लोग लगाते हैं, एक अभी जो लगाए होंगे खरीफ सीजन में जो इनका अभी चल रहा है, और दूसरा जो है कि रबी सीजन में लगाते हैं। तो उनका जो है वितरण अलग अलग ज़िले में लोग अलग अलग जिनको जैसा लगता है वैसे लगाते हैं। तो ये जो फॉल आर्मी वर्म है ये आप किसान भाइयों में इसको पहचानने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो कीट है एक तना छेदक होता है, तो तना छेदक के जैसा ही ये मिलता जुलता है। लेकिन दोनों में तुलना करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए कि अगर तना छेदक आपका लगा हुआ है तो उसके लिए अलग उसका नियंत्रण होता है, और फॉल आर्मी वर्म अगर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको अलग से उसका नियंत्रण के उपाय करने होंगे, कीटनाशी देने होंगे। तो सबसे पहले दोनों को आपको समझना है कि कैसे इनका कैसे नियंत्रण होता है या कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब तना छेदक मुख्यतः जब होता है तो आप देखेंगे कि या आपके मक्के के जो पौधे हैं जब घुटने या उसके नीचे भी जब रहता है तो आप देखेंगे कि जो मक्का के जो पत्तियां हैं उसमें लाइन से तीन आपको गोला गोला कटे हुए का निशान दिखेंगे। तो ये तना छेदक के चलते हो सकता है। और आप जब देखेंगे कि जो उनका जो बढ़वार होने वाला जो पोजीशन होता है या जिसको हम लोग मक्के का कंठ कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हो सकता है कि कुछ जो इसके जो शिशु होते हैं वो तना छेदक के वो उसमें मिलेंगे आपको। तो ये है तना छेदक का। और ये जो तना छेदक है मतलब आपके फसल को थोड़ा धीमी रफ्तार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर फॉल आर्मी वर्म से अगर आपके पौधे अगर आक्रांत हो जाते हैं तो ये आपके पौधे को बड़ी तेज़ी से क्षतिग्रस्त करते हैं। और साथ ही में ये जब आपके मक्के का जो कंठ होता है ये भी उसी में छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये अपना स्क्रीटा या कहें कि उत्सर्जन जो इनका छोटा छोटा जो जैसे कि केचुआ का जो जो बिष्टा होता है मल होता है उसी टाइप से इसके छोटे छोटे आपके उसके कंठ में दिखाई देंगे कि पड़ा हुआ है, जो काले कलर का मुख्यतः होता है। साथ ही में ये फॉल आर्मी वर्म जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। अब मुख्यतः जैसे कि दो सीजन में हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग मक्का लगाते हैं, तो अमूमन देखा गया क्या कि ये जो खरीफ सीजन होता है खरीफ सीजन में इसका प्रकोप रबी के तुलना में जो ठंडे सीजन में हम लोग जो करते हैं उसके तुलना में इसमें इसकी समस्या ज़्यादा आती है। तो इसके आने के कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण ये है कि इस मौसम में वर्षा होती रहती है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, जो इस कीट के बढ़वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यही कारण है कि इसमें ये ज़्यादा होता है। अब है क्या कि कुछ और कारणें हैं कि उसको कैसे आप पहचानिएगा, कैसे मतलब जो कीट है तो तना छेदक है या फॉल आर्मी वर्म का कीट है उसको आप कैसे पहचानिएगा। क्योंकि जब तक आप उसको सही से पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसका समुचित उपचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आक्रामकता भी हमने अभी तुरंत बताया है आपको कि अलग अलग है। एक थोड़ा धीमी रफ्तार से आपके पौधे को क्षतिग्रस्त करता है, दूसरा जल्दी जिसमें आर्मी लगा हुआ है। आर्मी का काम आप लोग सब लोग को पता है कि आर्मी अपने काम बहुत तेज़ी रफ्तार से करता है, इसीलिए इसमें आर्मी शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसको पहचाने कैसे, तो हम आपको फॉल आर्मी बॉम्ब के बारे में बता रहे हैं। अभी तना छेदक को आप रहने दीजिए, उसको जो जितना हम बताएं लगभग उससे तना छेदक आप पहचान जाएंगे। अब फॉल आर्मी बॉम्ब को कैसे पहचानेंगे, तो ये जो कीट होता है तना छेदक की तरह दिखता है लेकिन ये उससे मोटा और लंबा होता है, साथ में ही इनके जो शरीर होता है उस पे काले धारियां आगे से पीछे तक मतलब सर से उसके पूंछ तक काले धारियां रहती हैं। अब एक चीज दो चीज़ और है जो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका जो जिधर जो मुंह होता है या अगला हिस्सा में
2: तो इंग्लिश

इसका जो वाई होता है वो इंग्लिश का उल्टा वाई इसके माथे पे निशान होता है, जैसे हर जैसे कि किसी किसी पशु है या जो भी है उस पर कुछ न कुछ निशान होता है, हम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से इसमें जो उल्टा वाई का निशान होता है इसके आगे वाला पोर्शन में जिधर सर बोलते हैं उस साइड में, और जब पीछे साइड में जब आप आएंगे तो पीछे साइड में इसके चार काले काले धब्बे होते हैं जो बड़ी आसानी से आप ऐसे ही आँख से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ इसके पहचानने का। अब दूसरी बात क्या है, ये जो पहचानने का है तो इसमें लगभग लगभग नहीं 6 इन स्टार होते हैं। अभी आप बताएंगे कि इन स्टार क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के जो बच्चे होते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद वो पहले सोया रहता है, फिर उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर खड़ा होने के बाद वो रफ्तार से चलने लगता है। तो जब तक वो, तो ये अलग अलग उनके फेज है हमारे जो मनुष्य हैं उनके बच्चे का, इसी तरह से इस कीट के भी 6 फेज है। तो 6 फेज में जो उनका जो फेज 1 होगा या 2 होगा, तो वो अंडा के बाद, जस्ट अंडा के बाद जो निकलने वाला वो उसका अवस्था होता है, फेज इंग्लिश में बोल रहे हैं अवस्था होता है। तो उस कंडीशन में उस कीट का साइज छोटा होगा, और साइज जब छोटा होगा तो उसी रफ्तार में वो आपके फसल को भी उस समय में थोड़ा धीमा धीमा रफ्तार करेंगे, और उसको कंट्रोल भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब यही कीट जब है खाते खाते जब कुछ वो 3-4 इन स्टार वाले फेज में जब चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन में वो जो सिंपल आपका जो कीटनाशी है उससे हो सकता है कि उसका नियंत्रण ना हो। तो सबसे पहले तो आपको पहचानने का हमने तरीका बता दिया। अब ये क्षतिग्रस्त कैसे करता है, ये किस किस भाग को, मक्का के किस किस भाग को क्षतिग्रस्त करता है, ये कब कब आता है, तो ये इसके आने का टाइमिंग जो है ये कभी भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है जब हमारा मक्का जब मुख्यतः जब 4-5 पत्तियों का हो या कह लें कि एक महीने के जब आसपास होता है, उसके आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब ये करेगा क्या कि आपकी जो पत्तियां हैं, जो बढ़ने वाली पत्तियां हैं उसी के ऊपर ये आक्रमण करता है, उसको ये पूरी तरह से खा जाता है, और खाने के साथ साथ बहुत बार ये होता है कि आपका जो पत्तियां हैं उसको ये जाली नुमा बना देंगे। जाली नुमा कहने का मतलब ये आर पार उसको कट नहीं करते, आर पार उसको खा करके ख़त्म नहीं करते, बल्कि नीचे से वो खुरच लेते हैं, उनका जो हरा जो पत्तियां का जो हरा भाग होता है उसको खुरच के उसको खा जाते हैं, और पत्ती जो है वो लगेगा कि पेपर की तरह, जैसे कि जो अखबार या जो कोई कागज़ होता है उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है, उस टाइप से आपके पत्तियाँ दिखेंगे, जो तना छेदक में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है कि एक तो आपके पत्तियाँ को पूरा जो कंठ वाला है जो बढ़ने वाला है उसको तो खा ही गया, और जो दूसरी जो पत्तियाँ बची हुई हैं उसको आर पार दिख रहा है बहुत सारे पत्तियों में, तो ये हो सकता है कि आपका ये फॉल आर्मी बम के चलते ऐसा हो रहा है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है कि ये जो कंठ में है ये कंठ में छुपा हुआ रहता है, तो जब कंठ की आप जब देखेंगे उसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे ये इनके कीट आपको दिखाई देंगे आसानी से, साथ ही साथ वहाँ उसके बहुत सारे मल मूत्र भी उसमें रखे रहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका साइज भी जो पिलेट साइज बोलते हैं तो वो मतलब वो बड़ा बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब अगर ये ज़्यादा आपको इसका प्रकोप हो गए तो ये 3-4 दिन में आपके जो मक्के की फसल है उसको पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। अब ये जो आपका जो फॉल आर्मी बम है ये जब अगर मक्का अगर क्या पौधा अगर नहीं रहे, जब मक्का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तब ये कहाँ जाता है, तो ये जो फॉल आर्मी बम है ये मुख्यतः जितने भी जो ग्रामीण फैमिली के जो हमारे फसल है
तो उन पे भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपका ज्वार बाजरा ये सब

भी ये जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है। अगर इनको इधर से अगर मक्का ख़त्म हो गया, मक्का कोई काट लिए, तो आसपास में अगर ये लगी हुई हैं तो उस पर भी जा सकता है। अब तो इसीलिए ये नहीं कहते हैं कि मक्का अगर नहीं होगा तो ये नहीं रहेगा, इसके कई अल्टरनेट होस्ट है, इस अल्टरनेट होस्ट पे ये चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इसके जो वयस्क हैं वो एक रात में बहुत लंबी लंबी दूरी तक ये चले जाते हैं, लगभग 80 से 100 किलोमीटर भी ये उड़ सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है इनके जो वयस्क हैं उनका। इनका जो जो क्षति करने वाला है ये इनके वयस्क क्षति करते हैं जो चलते हैं, जो चल के सिकुड़ते हुए चलते हैं उस ये क्षतिग्रस्त करते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये चीज़ें हो गई, ये काफ़ी आपको समझने के लिए हो गया। दूसरी बात ये है कि आपको अगर किसान भाई अलग अलग टाइमिंग में अगर मक्का को लगाते हैं, कोई मक्का आज लगाए, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, कोई फिर उसके 15 दिन बाद लगाते हैं, अगर और उस क्षेत्र में अगर इसका प्रकोप ज़्यादा है, तो वैसे कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि सारे किसान भाई मिल करके एक साथ अपने मक्का के फसल को लगाएं, ताकि ये होता क्या है कि अलग अलग अगर अवस्था में आपके पौधे रहते हैं तो उसको ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं, उसके ओर ये एक को क्षतिग्रस्त करते हुए फिर जो पौधा उस अवस्था में आता है तो उधर वो शिफ्ट करके उधर वो आ करके उसको ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अगर जिधर इनकी समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पर किसान भाइयों को चाहिए कि सब किसान भाई मिल करके एक ही टाइम में अपना जो है इसके बीज को लगाइए, ताकि पौधा आप सब किसान भाइयों का पौधा एक टाइप का रहे और इनका प्रकोप कम से कम हो। साथ ही में अगर जहाँ भी ये होगा तो अगर एक किसान भाई के फील्ड में अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये मूव करें। और इसका जो है कि अगर 100 में से 5 पौधे में अगर आपको दिखता है कि ऐसा हो गया है, इसका फॉल आर्मी वर्म की समस्या है, तो आपको इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे कम है तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये मैं बोलूँगा कि जब भी अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको अपने खेत को फ्रिक्वेंट, मतलब है कि हर दिन लगभग आपके फील्ड में खेत में जाना चाहिए कि इनका क्या स्थिति है, कहीं कोई मतलब इसका कैसे फैलाव है, ज़्यादा तो फैल नहीं रहा है, तो वैसे आपको इसको रोकथाम करना है। अब क्या है कि इसको कैसे, इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार तो हम कुछ आपको बताए हैं कि अलग अलग टाइम ना दे करके एक साथ रोपाई करें। दूसरी बात है कि हमको इसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। हम अच्छे गुणवत्ता वाला बीज लें सबसे पहले, जो लोकल बीज का चयन ना करें, अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लें जिसमें किसी भी कीट का प्रकोप कम से कम होता है। खाद समुचित मात्रा में देना है। बहुत किसान भाइयों में ये रहता है कि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो हमारा जो है बढ़वार ज़्यादा होगा, हमारी फसल ज़्यादा होगा। लेकिन जो अनुशंसित मात्रा है यूरिया देने से का, उससे अगर हम जब ज़्यादा देते हैं यूरिया तो क्या होता है कि ये फसल में तेज़ी से बढ़वार होता है, उसके जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो पौधे की पत्तियां या पौधे की लंबाई बढ़ने की जो होता है वो तेज़ी से होता है, और उसका जो टिशू है, सेल है, वो मुलायम हो जाता है, और ये ऐसा होने के चलते जो फॉल आर्मी वर्म या कोई भी कीट उसको आसानी से उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ अगर कभी तेज हवा आई तो उसमें आपका गिरने की भी समस्या रहती है, इसीलिए यूरिया की मात्रा उतना ही देना है जितना अनुशंसित है। साथ में फर्टिलाइज़र में जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तीनों देने की होती है संतुलित मात्रा, उसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं करें। अगर आप पोटेशियम की कमी करते हैं, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो इसके चलते भी आप में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। पोटेशियम ऐसा उर्वरक है जो आपको कीटों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए पोटेशियम आपको देना ही है, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। और जो हम लोग जो उसके
बोलते हैं कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि यूरिया एक ही बार में दे देना है, उसको बांट बांट करके फसलों के अलग अलग फेज में देना है, तो वो आपको करना है। साथ में जब अगर हम केमिकल पे जब आ जाते हैं कि उसको रासायनिक विधि से कैसे करना है।

0: ये सब तो आपको बचाव के लिए करना है, लाइन आपको मेंटेन करना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है वो मेंटेन करना है, और इन सारी चीज़ों को करते हुए भी अगर जब फॉल आर्मी वर्म का जब आपका प्रकोप होता है तो एक सिंपल है, अगर पहला और दूसरा स्टेज में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5SG इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो झिल्ली की तरह होता है, झिल्लीनुमा होता है, इसको पहले आपको थोड़ा सा पानी में घुलाना है, और जब घुल जाए तब इसको फिर से आप अपने जो स्प्रेयर है उसमें इसको डाल करके करना है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको 10 लीटर पानी में मात्र 4 ग्राम आपको ये झिल्ली वाला दवा लगता है, मतलब पहले उसको पानी में घुलाना है, मतलब आप हिसाब से कर लीजिए, अगर आपका पीठ वाला अगर 15 लीटर का है स्प्रेयर तो उसके लिए आपको कि पहले एक छोटा सा ढक्कन या कोई भी पात्र में 6 ग्राम आपको कीटनाशी डालना है, ये इमामेक्टिन बेंजोएट डालना है, और उसके बाद डालने के बाद उसको जो है आपको फिर आपको स्प्रेयर में डाल करके उसको शाम के समय में छिड़काव करना है, जनरली 4 बजे के आसपास करना है, और उसको मेर पे भी करिए। ये है दूसरी बात है कि जब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब चला जाता है तो 2 कीटनाशी और है जो आपको थोड़ा ये कॉस्टली है लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, एक है उसमें थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोलेन 9.6%, इसकी जो है 0.25 ग्राम, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसकी 1 ml दवाई जो है 4 लीटर पानी में आपको डालना है, मतलब कहे कि अगर 15 लीटर वाला स्प्रेयर है तो उसमें 4 ml दवाई थायोमेथोक्जम 12.6% प्लस लैम्डा साइलोलेन 9.5% का देना है, और जब भी आप कीटनाशी जब देते हैं तो उसमें जो है कोई जो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैम्पू या वेटिंग कोई भी चीज़ उसको आपको देना है ताकि वो आपके सरफेस टेंशन को बढ़ाता है, आपके कीटनाशी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और दूसरा जो एक और इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है स्पाइनोटोरम, 11.7%, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ स्टीकर मिला करके इसको आपको छिड़काव करना है। इसके छिड़काव करने से आपका जो है ये फॉल आर्मी वर्म की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को कर करके आप अपने जो मक्के की जो फसल है उसमें कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, अभी आपने फॉल आर्मी वर्म के बारे में जाना, और ये कीट की पहचान हम कैसे करेंगे इस कीट की, और साथ ही इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है, और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार। 19 कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ

0: बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

विद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन

रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही, और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आप

के चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है, और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल ले, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए, और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है, और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं, और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो, और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा
किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर

गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए, साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले, उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहें। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट ज़रूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

FM Green. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
1: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों

0: तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
1: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुवाई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुवाई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पे हम सीधे बुवाई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुवाई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुवाई होती है और एक गीली बुवाई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुवाई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुवाई करते हैं, अपने धान की बुवाई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुवाई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं वतर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लाविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुवाई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुवाई करना कैसे है, हम सीधी बुवाई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान, धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं, और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम जब जो हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं, उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
0: पडलिंग यानी कि
1: पडलिंग यानी कि हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ जड़ें

हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़े पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है। यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हम इरिगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें

0: हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में. तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है. नहीं, हम क्या करते हैं, अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं. तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं. तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की. और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में. तो ये होती है. और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो. तो ये हमारी 3 तकनीकें थी. इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजे जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे. तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं. तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे. तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है. अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन 3ों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पर डिपेंडेंट है ये सब.
1: जी मैम. मैम, इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है.
0: जी.
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते. जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है. अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं. और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुवाई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती. तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुवाई करना चाहते हैं. जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं. तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे. तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है. एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी. तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है. तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं. तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं. अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड. तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है. देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड. तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है. प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2 दिन में देते रहिए. तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए. देखिएगा कि वो आपका जो बीज

0: है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें। और ब्रॉडकास्ट करने के बाद, जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डेपोग नर्सरी, तो ये डेपोग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पर भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है, तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डेपोग नर्सरी। तो ये डेपोग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डेपोग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजुअली डेपोग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
1: पौधशाला

0: के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो।
1: अगर मैम 1 हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
0: 1 हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
1: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर
1: पर्याप्त है
0: पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
1: जी मैम। और बीजोपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीजोपचार करना चाहिए?
0: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर सुखा ले छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदीनाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेवेस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए, और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए। और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: जी मैम। और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
0: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है। वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसकी खासियत यह है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2 to 3 प्लॉइंग्स करना चाहिए, और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे

0: तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई, निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके। और इन दो क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहां पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
1: और मैम अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है। और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: मैम अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
0: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र महसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
1: तो किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम आपने जो जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विषय

0: इस कार्यक्रम उन्नत कृषि में आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और खास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
1: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
0: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
1: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते हैं और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया, जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
0: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
1: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
0: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप की पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
1: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कोमल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि इस सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
0: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
1: जी,
0: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
1: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, तो इससे क्या होता है संक्रमित

0: पत्तियों, नई टहनी टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है, उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छंटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छंटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किशन भाई, तो इसका मतलब लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूंगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फ़ायदे हैं। मैम,
2: हाँ, थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है, तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 g जो है उसमें प्रति 100 g में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक कि चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है। यदि इसके हम

0: नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है। इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है, और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है। नींद आने की किन्हीं को समस्या हो, वो नींद नहीं आती है, तो इनका आप सेवन करेंगे तो आपको नींद भी आएगा। और जो गर्भवती स्त्रियां यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे सुंदर और स्वस्थ बच्चे को वो जन्म देती है। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होता है। और यदि हम रात में सोने से पूर्व ताजा रस का सेवन करें तो कब्ज दूर होता है। और गुठली का जो गिरी होता है उसका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको हम लोग आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको यदि महीन चूर्ण बना लें तो मंजन की भांति उसको हम दांत साफ करते हैं तो पायरिया आदि रोग से हम लोग को छुटकारा मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आम का बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है, और उसको हम सेवन अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
0: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें कुछ उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2-3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10-15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं, लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, खत्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी खराब होने लगता है। 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा खराब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं। वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है। तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं, और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है, जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं, और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए। इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इसे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद है, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियां बनाती हैं, जिसपे लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं।

वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है। तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइट के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं, तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आम

और दिल्ली जैसे शहर में पैक्ड पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 gram नमक, 20 gram काली मिर्च और 20 gram साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तब उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं, उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 liter है तो उसमें 3 gram के अंदाज से उसमें के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉप फल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उन फलों को आप अच्छे से धो कर कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीच का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गूदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं, उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गूदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गूदा हुआ है उस गूदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आंच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 gram क्योंकि कच्चे आम का बनाने इसलिए 4 gram साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 liter स्क्वैश में आपको 3 gram KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 gram साइट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 gram साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका कुछ हटा करके उसके गूदे को निकाल लेना है, गूदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है, इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं, ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में इसे गर्म करके गूदा को नरम कर लेते हैं। अब गूदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गूदा लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 gram साइट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 gram भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 gram भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े पानी में घोल करके
उसमें मिला देते हैं।

0: और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में, साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2 से 3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेटकर खौलते पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबोएं। बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए। उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं आरजे अनु को। आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हां श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय, और आज हम बात करेंगे जी हां अच्छी फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: मैडम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
2: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
1: जी
2: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
1: क्या
2: करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
1: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
2: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं जब या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के

0: है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हों, पत्तियाँ हों, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो, तो उसका जो है, अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उस उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पे भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों, उनकी छटाई भी आवश्यक है ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
1: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक ख़त्म हो जाती है। जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत उसकी सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं और पोषण कहाँ पे दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो, उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक, और तने के से और उस दूरी को 4 बराबर भागों में बांट दें। यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को 4 बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ, एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें और बीच वाले जो 2 भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाले का सफाई करके पेड़ जो भी बगीचे में आपके सूखी टहनियाँ, रोगग्रस्त टहनियाँ, सड़े गले पत्ते हो उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है, बगीचा जो है वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है, 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है, तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फॉस्फोरस 400 से 50 ग्राम और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है और इसकी मात्रा जो है, इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक, और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सके हैं?
0: कीट बाधी व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें, और जहाँ पर भी आपको

0: लगे कि कीड़े मकोड़े हैं, उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते हैं
1: जी।
0: लीची के केस में बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियां में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में, और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
1: जी।
0: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है वो संरचना जो बनती है पत्ती में, इसको कहते हैं इरेनियम। और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 ग्राम पर 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हों उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें। और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहे। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है, और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं, तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है। और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पर जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें, जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें। उसके बाद न्यूबान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें, और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं, और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवम्बर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है, तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं कि आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है, उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के कि तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे

0: भाग होते हैं उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपायरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है। आम में दो तिहाई तीन चौथाई भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है, और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवंबर माह में करें
1: जी।
0: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डायबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डायबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समस्या सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें। उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डायबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक, नवंबर मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थाला को साफ रखें और तूतिया चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, इसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें। उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर, उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें और उसके ऊपर नीचे, पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप

0: वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुझिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे। और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोप्लाइफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो गुझिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से अपनी निजात पा सकते हैं और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा, फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या

कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज़ का ख़तरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियाँ हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे जिंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर, स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50-80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30-90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है। अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना ले कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर, सोचिए, खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग ही गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला, तो ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना
खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में

पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप

लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12 एक बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज 1 बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आप को ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं, फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
2: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
1: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
2: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO को नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें

0: आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाजार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपए किलो मिलता है वो बाजार पहुंचते ही 40 रुपए किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाए तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
1: जी, यही तो पूरा खेल है। फायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात ये है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
0: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
1: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की जरूरत है। अपने जिले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की जरूरत है। सरकार भी FPO बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
0: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें FPO बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं?
1: जी जरूर। तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है, ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो FPO होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल FPO के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं, और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है, और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो, वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO, व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
0: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो, तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
1: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी

0: एंटिटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
1: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
0: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10-15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता ले?
0: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
0: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

FM Green. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM Green.

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।